पानी परियां मुस्कुराए, देखो बगोरी कर राए, हमको इशारों से बुलाए।